0: टूटै, जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख जी जन्म ते छूटे रहाओ। माया फास बंद नहीं फारे और मन सुन ना लुकै, आपा पद निर्माण ना चींदियाँ एन बेद अपाओ ना चूकै। कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बहूणा, उदे अस की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लेब लीणा। ज्यों प्रति बिंब को बिंब मिली है उदक कुंभ भिखसाना, कहो कबीर ऐसा भरम भौ पागा तो मन सुन सुमाना। ज्यों प्रति बिंब को बिंब मिली है उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भरम भागा तो सुन समान तो मन सुन समाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा श्री कबीर जीओ कौम गुण चरण हम बिनबता, गुर चरण लाग हम बिनबता, पूछो कह जी उपाया कवन काज जग उपजे बिन से, कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटे जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख जी जन्म ते छूटे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग, गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होची भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार। भुखिया भुख ना त्रीजे बन्ना पुरिया भार, चारा हुई है तुम कूड़े कुत्ते पाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई,
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिला वडियाई,
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है,
1: इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाई है,
0: हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई,
1: नानक हुक्मे जे बुझै ता हौ मैं कह न कोई।
0: गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान,
1: गावे को गुण वडियाई चार, गावे को विद्या विख विचार,
0: गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे,
1: गावे को जापै दिसे दूर गावे को वेखै हद रह दूर,
0: कथना कथिन आवे तोट कथ कथ कति कोटि कोट कोट,
1: देदा देले दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाही,
0: हुक्मे हुक्म चलाहे रा।

0: गाविए सुनिए मैं रखिए भाउ दुख पर हर सुख घर लै जाए।
1: गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहे असमाई।
0: गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई।
1: जे हम जाना आखा नाही कहना कथन न जाई।
0: गुरा एक देव बजाई

0: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण देहे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास
1: सुने ईश्वर ब्रह्मांड सुने मुख सलाहन मंद
0: सुने जोग जोग तन भेद सुने सासत सिमरत वेद
1: नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास
0: सुने सत संतोष ज्ञान सुने अठ सठ का स्नान
1: पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान
0: नानक भगता सदा विगास।

0: मन जम के साथ न जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मन मार्ग ठाक न पाए, मन पथ सिउ प्रगट जाए।

0: असांख जप असांख भाव असांख पूजा असांख तप ताउ
1: असांख ग्रंथ मुख वेद पाठ असांख जोग मन रहे उदास
0: असांख भगत गुण ज्ञान विचार असांख सती असांख

0: सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्ब संभाले किते राग परी सो कहिए किते गावन हारे
1: गावे तुनु पौन पणी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावे चित गुप्त लिख जनन लिख लिख धर्म बिचारे
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद इंदा सुन बैठे देव त्यां दरन आले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बिचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग भेदा नाले
0: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: गावन रतन उपाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले
0: गावे जोत महाबल सूरा गावे खाने चारे
1: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
0: से तुदनो गावे जोत तो पावन रते तेरे भगत रसाले
1: होर केते गावन से मैं चित न आवन नाने क्या विचारे
0: सुवे सुवे सदा सच साहेब साचा साची नाई
1: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
0: रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जन पाई
1: कर कर वेखे कीता अपना जिवतिसी वडियाई
0: ज्योतिष पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई
1: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई
0: मुंदा संतोख सारम पद झोली ध्यान के करे बभूत
1: किंथा काल कवारी काया जुक्त डंडा प्रतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग को वेश
0: भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध
0: संयोग बिजोग दो कार चलावे लेखे आवे भाग
1: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग को वेस
0: एक माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान
1: एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान
0: जिव तिस पावे तिवे चलावे जब होवे फरमान
1: उना नदर न आवे बहुता इहो वडान
0: आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस
1: आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एक
0: कर कर वेखे सजन हार नानक सचे की

0: सोतर्मे
1: नमो रोगहर्ता नमो रागरूपे नमो शाह शाहं नमो पुपुपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग सनाने
1: नमो मंत्रं मंत्रं नमो जंत्रं जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्रं तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध्वदंग अगंग उंग हर्ता
0: परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
1: अशेदीय पेदीय नामंगा कामं समस्तो पराजी समस्त स्थामं तेरा जोर चाचरी चंद
0: जले हैं।

0: परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष आदेश अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम आप रूप अमीक अनुस्त एक पुरुष अवतूत अंगहीन अभंग नतम एक पुरुष अपार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रित पार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शासन न जानिए जे रूप रंग रेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत
1: और सिमरत प्राण शासन न आप ये बोचित मद पार शंत व प्रसाद
0: गुण गण उदार महिमा पार आसन भंग उपमा नंग
1: अनुभव प्रकाश निस्तिन नास आजान बाहो शाहान

0: नरकात स्वरूप है तिर मुक्त विभूत है पर भुक्त प्रभ है सुयुक्त सुधा है
1: स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त अपराज है सदा सर्व
0: समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है।

0: सोपं पगे सुसर्व अनुरागे
1: भक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकन पर नाश है प्रत्यल परवास है
0: नरकात पर वह सदैव सदा है व्यपुक्त स्वरूप है।

0: तो अमीक हैं सदैविंग प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: के जहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है
1: साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रोजी द हिंद है के राज करीम है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है
1: गरीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल फिकन है
0: कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है।

मिथुलर वन है तमा मुलतमीज है समस्त लजीज है जमीन उल जमा है मीकुली माह है करी मुल्क माल है के जरूरत जमाल है।

0: Sepant, Jaltal Mahant, this is Beant,
1: Anubhavanas, Tirtaras, Ajan, Baho, Ekes, Daho,
0: Ankarad, Katanianad, Kalkand Kial, Gurbarea Kal,
1: Kalkarpanam, Chitichanam, Anchitigat, Ajijanabat,
0: Anchandigat, and Ranjabat, and Rutupandar, and Atapar,
1: Anitaram, Atitikaram, Anban, Anant, Data Mahant, Harbol, मना
0: शंत व प्रसाद करुणालय है करकालय है कलखंडन है वह मंडन है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व कारण है
0: कृत के त्रण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है
1: सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपासे है सर्वनाश्य है
0: करुणा कर है वह स्वयंवर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
1: ब्रह्मंड से है कलखंड

0: चेतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है,
1: अजवाकृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है, खल खायक है,
0: वैश्वंबर है, करुणालय है, नित्य नायक है, सर्पायक है,
1: पापंजन है, हर गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
0: कलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जसे, पुचंग पर्याति छंद,
0: नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे।

0: नमस्तुल पर नामे सुमस्तुल पर नासे अगंजुला नामे सुमस्तुल निवासे
1: कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग पर नासी सुधर्मंग बैपूते
0: सदा सतदा नंद सतरंग पर नासी को रिमुल को निंदा सुमस्तुल निवासी।

0: पाए कर विसन पर कासा सकल काल का किया तमासा।
1: जवन काल जोगी शिव कियो मेद राय ब्रह्मा ज्योतियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा।
1: जवन काल सब जगत मनायो देव दैत दशन उपजायो।
0: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
1: नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी।
0: शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत।
0: चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।
1: जब कर्क करा करता रा प्रया तरत तब देह अपारा।
0: जब कर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ।
1: जेते बदना सिर सब तारे आप अपनी बूझ उचारा।
0: तुम सब ही ते रहतन रालम जानत भेद भेद हर हा।

0: के चरण हृदय त्याए अंतरात्मा संभाले।
1: आप छड सदा रह परने गुरु बिना वरना जाने कोए।
0: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन मुख होए।
1: जेको गुरु ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
0: पावे मुक्त न होरते कोई पूछो बिवेकिया जाए।
1: अनेक जूनी परमावे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु।

चलायो पंथ गुरु मान्यो ग्रंथ पुरा की दे खोज शब्द मैं दे ताकि रहे ना कोई।

गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वड्डियां भागां वाले हो सचे पातशाह जी ने अमृत वेले तो अपनी पवित्र गोद दा आनंद सचे पातशाह बख्श रहे हैं। धन्यवाद है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्हां ने सानू अपनी पवित्र गोद दा आनंद बख्शिश किया है। जो सचे पातशाह जी ने अज दा हुक्म बख्शिश किया है मूल मंत्र उच्चारण करके राग आसा बाणी भगतां की इहदे विच सचे पातशाह जी ने तीन भगतां दी बाणी दा जिक्र किया है कबीर जीओ नामदेव जीओ रविदास जी। पहला शब्द सचे पातशाह ने बख्शिश किया है आसा श्री कबीर जीओ गुरचरण लाग हम बिन वता पूछत कह जीओ पाया। मैं अपने गुरु दे चरणा दे विच बेनती करदा हाँ कि सचे पातशाह मैनू ये गल समझाओ ये जीव कादे वास्ते पैदा किते ने।

कई कोड़ पुजारी, कई कोड़ आचार बिहारी, कई कोड़ पर तीर्थवासी, कई कोड़ बन पर महदास, कई कोड़ वेद के स्रोत है, कई कोड़ तभी सर होते है, कई कोड़ आत्म जानता है, कई कोड़ कव का विचार है, कई को नवतर नाम दयावे, नानक करते गंत न पावे, कई कोड़ भय मानी, कई कोड़ अंध ज्ञानी, कई कोड़ कृपण कठोर, कई कोड़ अभागा तम निकोर, कई कोड़ पर द्रव गुहिरा, कई कोड़ पर दुखना करे, कई कोड़ माए श्रमाए, कई कोड़ पर दे श्रमाए, जे जित लाव तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोड़ से जति जोगी, कई कोड़ राज रस भोगी, कई कोड़ पंगी सुरूपाए, कई कोड़ पात्र विष्णु जाए, कई कोड़ पौन पाणी बै संतरे, कई कोड़ दे स्व मंडले, कई कोड़ सचिर सुर नखेतरे, कई कोड़ देव दानी दुर छात्र, सब समग्री अपने सुतारे, नानक जिस जिस पावे तिस ते निस्तारे, कई कोड़ राजस्थान सातिक, कई कोड़ वेद प्राण समृत अर शासत, कई कोड़ कीर्तन संबंध, कई कोड़ नाना प्रकार जंत, कई कोकर, कई कोड़ के चर जीवै, कई कोड़ गिरी मेर सुरन थीवै, कई कोड़ जकन पिसाच, कई कोड़ भूत प्रे सुकर मिर गाच, सब ते नेरा सब ते दूर, नानक आप अल्पत्रय भरपूर, कई कोड़ पाताल के वासी, कई कोड़ नोक्षो निवासी, कई कोड़ जन्म जीव मरै, कई कोड़ बोझो निफिरै, कई कोड़ बैठती गाय, कई कोड़ का लत खपाए, कई कोड़ के तनवंत, कई कोड़ माया में चिन्ह, जय जय भैन तैत राखे, नानक सब कोई प्रभु के हाथ, कई कोड़ पै बैरागी, राम नाम जा संगत निवलागी, कई कोड़ प्रभु को हो जनते, आत्म मैं पार मनो हंते, कई कोड़ दर्शन प्रभु प्यास, तिनको मिले प्रभु विनाश, कई कोड़ मांगे सा संग, पार पुंजन लागै रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोड़ खंडीर खंड, कई कोड़ कश मंड, कई कोड़ अवतार, कई जुगत किन विस्तार, कई बार बसर विपासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोड़ किने विपात, प्राप्त ब्रह्मा समाता, कंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोड़ पार मुखे दास, जिनो ते आत्म प्रकाश, कई कोट तत्क सदान हर को नेत्री, कई कोट नाम रस भी अमर पै सत सदी जीव, कई

हो सी भेसा चष्ट भरे चरण सत सत प्रसनार पूजा सत सत उदार दर्शन सत सत वेखनार नाम सत सत आवनार आप सत सत सवदारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रोगता सुरत सत सत जन सुरता बुजनार को सत सोए नाम सत सत प्रोसोए सत सरूप हृदय जिन मानिया करण करण दिन मूल पछाने आ जा कृत विश्वास प्रवया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्भो विसाना जिस विजय तिस मन समान वस्त माय ने वस्त गुडाए ताको पे न कह न जाए बूझे बूझन हर विवेक नारायण मिल नाम के ठाकुर का सेवका के करि ठाकुर का सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन भरति ते ठाकुर के सेवक निर्मरी ते ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवको प्रभु।

दृष्टार अस्पति आप कथे आप सुनने हारे आप एक आप विस्तार जाति भावत सृष्टु भाव ने भाने लय समाये तुम ते भिन्ने किछु होए आपन सुसा जगत परोए जा को प्रभु जी आप जाए सत नाम सोई जिन पाए सुसम दर्शी तत कवि त नानक सगल सृष्ट का जेता जी अंतर सब ता के आदीन दयाल नाथ को नाथ जिस रखे जिस को न मारे सो मुझ मनु सारे तिस ते जबर कहां को जाए सब श्री मनोरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साध गुण निधान बेंद पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपरोत कृपाले अपने करतब जाने आप अंतर जामी रवि आपरत पाले जीन बपा जो जो रोच सत से दयात जिस भगत ले मिलाए भगत करे हर कई गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने करण हर नानक जाने जन लग हरे किनाए तिसकी आस न मिरथे जाए सेवक को सेवा अपने कुंभुज परम पद वाए से पर नहीं विचार जाके मन बसे निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपै मेले सा संगल करुण आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् कर विचार दृढ़ देखा करो चार अमृत वचन करके गुण गाओ प्राण तरण कह स्वभाव आठ पैर पर वेखो नेरा मिटे ज्ञान बिसें देरा सुन बदे सिर देव साव मन से नाम कुल पावल पल दले सुहा राम नाम त्रोड़दार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन से ते साज परिखिया मन तन नाम जपो ले लाए दुख दर्द मन से हो जाए सच पार करो पार इधर गए निवेखे तुम्हारी एक टेक रखो मन माए नानक वरण आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जब रखनार त्या निर्भो जपे सकल भमिटे प्रभु कृपा ते प्राण छूटे जिस पर रखे तिस नाहि दुख नाम जद मन हो सुख चिंता जाए मठे अहंकार ते जन को न पहुंचने हार से रूप ठाडा गुरसूरा नानक ता के कर पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन देख दृष्ट चरण कमल जाके अनूप चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा से उपरान त्रजामी पुरुष प्रदान जिस मन बसे सो निदाल ता के निपने आवत खाल अमर भय अमरा पद पाय सा संग नानक हर ते असलो ज्ञान इंजन गुरु दिया ज्ञान दिर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगा सष्टपदी संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कसकट मायण करंग नानंद स्टाय नौन दम प्रभु का नाम दे ही मैस का विश्राम सुन समान तय नाथ कहना जय चुर विस्मा तीन देखे से आप दिखाए नानक थे जन सोजी पाए सोंतर सुबाहरण अंत कटकट व्याप रहा भगवान तरन में आकाश प्या सरलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बैसंतर माए चार कुण दाय समाय तिस्ते बिन नहीं कोठा गुरु प्रसाद नान खूबाव वेद प्राण समर्थ में देख सस्य सुर नक्षत्र मायक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कमू डोले सर्व कला करके ले खेल मोल न पाए गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी जो थारे स्वामी उत्पाद गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिनमय विशाल समझना का पेखन सब ब्रह्म समझना हृदय सब धर्म संत जना सुन सुवचन सर्व व्यापी राम संगरचन जिन जाता तिस के रा सत वचन साधु सब कह जो जो ऐसो इस कुमाने करण करावन हर पर जान अंतर बसे बार भी हो नानक दर्शन दे सम हो आप साथ किया सब साथ तिस प्रभु ते सगलित पात तिस भाव ते कर विस्तार तिस भाव ते अहंकार अनुकला लखी न जाए जिस भाव ते ले मिलाए कम निरकम किए दूर आपे आपा भरपूर अंतर का जिन आप जनाए नानक ते जन सो जी पाए सुवंतर सुबाहरण सर्व सर्व भूतिया वर्तार सर्व न्याण पेखन हारा सर्व समी जा खतन पंजा साहब सुनाम जाने खेल बना के कारी की मैं सब के मद लिप्त रह जो कुछ कहना सो आपे कहे आगे आवे आगे जाई नानक जा पावे तां ले समाए इस ते होए सुनाई पूरा और